ब्रह्मेश्वरं प्रभुशिवालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं आशीर्दिया भेदिया नामं कामं समस्तो ब्राजी समस्तस्त धामं।

देसौरण भेजाकर रूपरेह नाराग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैल्यो अनुराग नाम का महीन बेताब न जाए सर्वा सर्वत्र मां सदा मानताए एक मूतने दर्शना की रूप अनेक खेल खेला खेल खेलने अंध को हरेका देव न जा नहीं जय भेदर्क देव

जग श्री भगवान को भेद ना पायो। चौपाई साहेब एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेओ बारहवीं दी चौपाई हमरी करो हादर चा पूर्ण होए चरकी चा। तव चरण मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुख सभा तुम गावो। आप हादा महे बचावो सुखी बसा मोरो परिवारा सेवक सिख सभा करतारा। मोर इच्छा नहीं करदा करिया सबरन गवा संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा तमें शाड़ कोई अवर न चाहूं। जो बार चाहूं सो तुम दे पाऊं सेवक सेखा

उत्तरे सकल विसूरे दुख रोग संताप उत्तरे सुनी सची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा भर पूरे बिनवंत नानक गोरे चरण लागे

कोट ब्रह्मांड कोट ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे सतपाल नित सार सुमल एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना परियारे

हर हर निर्मल त्याए, तुरमस्तक जिनको लिखिया से गुरमुख रहे लिवलाए रहाओ। हर संतो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर, गुरमत जिनी पछाणिया से देखै सदा हजूर। जिन गुण तिन साध मन वसै औगुणवंत्या दूर, मन मुख गुण ते बाहरै बिन नावै मरदै चूर। जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन त्याया हर सोए, अंदन भक्ति रत्या मन तन निर्मल होए। कूड़ा रंग को संभका बिनस जाए दुख रोए, जिस अंदर नाम प्रगास है ओह सदा सदा थिर होए। इहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चेतै लिवलाए, पग खिसिया रहना नहीं आगे ठौर ना पाए। ओह वेला हथ न आवई अंत गया पछताए, जिस नदर करै सो उबरै हर से ती लिवलाए। देखा देखी सब करै मन मुख बूझ न पाए, जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए। हर गुण गावै हर नित पढ़ै हर गुण गाए समाए, नानक तिन की बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिवलाए। श्री राग महला तीजा, जिनी एक मन नाम त्याया गुरमति विचार, तिन कै मुख सद उजलै तित सच्चै दरबार।

हर हर सदा त्याय मलहमें कढ़ै धोए रहाओ। मनमुख नाम ना जाननी विणनावै पत जाए, शब्द साध ना आयो लागै दूजे पाए। विष्टा के कीड़े पवै विच विष्टा, से विष्टा माहे समाए। तिनका जन्म सफल है जो चलै सतगुर पाए, कुल उधारै अपना धन जनिंदी माए। हर हर नाम त्याई जिसनों कृपा करे रजाए, जिनी गुरमुख नाम त्याया विचो आप गवाए। ओए अंदरों बाहरों निर्मलै सच्चे सच समाए, नानक आए से प्रवाण है जिन गुरमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा हर भगता हर धन रास है, गुर पूछ करे वापार। हर नाम सलाहन सदा सदा वक्र हर नाम आधार।

छोटो बल जाओ आप छोड़ चरणी लगा चला तिनके पाए लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए बिन गुर महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुर लोड़ लाओ जिद्दू पाईए सच सोए असुर संगारै सुख वसै जो तिस पावै सो होए जिहा सतगुर कर जाणिया तिहो जिहा सुख होए इहो सहसा मूलै नाहीं पौलाए जन कोए नानक एक जोत दोए मूर्ति शब्द मिलावा होए श्री राग महला तीजा।

क्या को आख सुनाए। गुरमुख अख पे देव डाई आपे सेव कराए। देख कुटुंब मोहे लुभाना चलद्या नाल न जाई। सतगुर सेव गुण निदान पाया तिसकी कीम ना पाई। हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई। अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई। हर जियो दाता भगत वशल है कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड्याई। श्री राग महला तीजा तन जननी जिन जाया तन पिता प्रधान। सतगुर सेव सुख पाया विचो गया गुमान। दर सेवन संत जन ख

मन तन रत्ता रंग स्यो हमें तज विकार अहनस हृदय रब रह निरपौ नाम निरंकार नानक आप मिलायन पूरे शब्द अपार श्री राग महला तीजा गोविंद गुणी निदान है अंत ना पाया जाए कथनी बदनी ना पाई है हमें विचो जाए सतगुर मिलिए सद पैरच है आप वसे मन आए पाई रे गुरमुख बूजै कोए बिन बूजै कर्म कमावणै जन्म पदार्थ खोए रहाओ जिनी चाख्या तिनी साध पाया बिन चाखै भरम पुलाए अमृत साचा नाम है कहना कछु ना जाए।

आओ जिन कर कारण तारिया सोई सार करे गुर कै शब्द पछाणिऐ जा आपे नदर करे से जन शब्द सोहणै तित सच्चै दरबार गुरमुख सच्चै शब्द रतै आप मिले करतार गुरमति सच सलाहणा जिसदा अंत ना पारावार घट घट आपै हुक्म वसै हुक्मै करे विचार गुर शब्दी सालाहियै होमै विचो खोए सा धन नावै बाहरी अवगुणवंती रोए सच सलाही सच लगा सच्चे नाए तृप्त होए गुण विचारी गुण संग्रहा अवगुण कड्डा तोए आपे मेल मिलाए दा फिर विछोड़ा ना होए नानक गुर सलाही अपना जितू पाई प्रभ सोए श्री राग महला तीजा सुन सुन काम गहे लिए क्या चलै बाह लुड़ाए अपना पिरना पछाणई क्या मोह दे सह जाए जिनी सखी कंत पछाणिया हो तिन कै लागो पाए तिन ही जैसी थी रहा सत्संगत मेल मिलाए मुंदै कूड़ मुठी कूड़ियार प्रभ पिर सच्चा सोहना पाइए गुर विचार रहाओ मनमुख कंत ना पछाणई तिनको रैण विहाए गर्भटिया तृष्णा जलै दुख पावै दूजे पाए शब्द रतियां सोहागणी तिन विचों होमै जाए सदा पिर रावै अपना तिन सुखै सुख विहाए ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिर न पाया जाए अज्ञान मती अंधेर है बिन पिर देखै भुख न जाए आवो मिलो सहेलियो मैं पिर दे मिलाए पूरे भाग सतगुर मिलै पिर पाया सच समाए।

वै परे अपना सहजे सच समाए रहाओ। शब्द रतियां सोहागणी सच्चे शब्द सिगार, हर वर पायन कर अपने गुर कै हित प्यार। सेज सोहावी हर रंग रवै भगत परे भंडार, सो प्रभ प्रीतम मन बसै जे सब सै दे आधार। फिर सलाहण अपना तिनकै हों सद बलहारै, जाओ तन मन अर्पी मन तन अर्पी सिर देई तिनकै लागा पाए। जिन्नी एक पछाणिया दूजा भाउ चुकाए, गुरमुख नाम पछाणियै नानक सच समाए। श्री राग महला तीजा, हर जी सच्चा सच तू सब किश तेरे चीरै, लख चौरासी तरस दे फिरे बिन गुर भेटे पीरै। हर जियो बख्सै बख्स लै सुख सदा शरीरै, गुर प्रसादी सेव करी सच गहर गंभीरै। मन मेरै नाम रते सुख होए, गुरमति नाम सलाहियै दूजा अवर ना कोए रहाओ। धर्म राय नू हुक्म है बै सच्चा धर्म विचार, दूजे पाए दुष्ट आत्मा ओहो तेरी सरकार।